एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एक मात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

0: दिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्मा ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति, अध्यात्म ज्योति।

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्म

ज्ञान गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुने छ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

जय कल्कि देवा, त्रेता में राम, द्वापर में घनश्याम और कलियुग में प्रगटे कल्कि भगवान। इनका नाम सुमिरन करने से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। तो आइए इस भजन के माध्यम से हम सब श्री कल्कि भगवान का सुमिरन करते हैं। जय कल्कि देवा।

आपस में पड़ी और हम कुंवारे रह गए, सब बराती चल दिए दूल्हा बेचारे रह गए। धीम फटाफट धीम।

सोन रुबी नाव मुळ ओसा अरे जाता उणे कजाय अरे मुचले लावत पार पार मोजा वो देत के लागले मुने चाक मुडन पोई मोजा आंजा कोरमा का पुई जाय आंजा

कुंवारे भले धींगा मुश्ती हुई खूब झगड़े हुए आधे लूले हुए आधे लंगड़े हुए ऐसे घूसे लगे ऐसे ठंडे पड़े सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े घूसे डंडे दे घूसे डंडे दे घूसे डंडे दे बाप दौलत लूटा हाथ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: क्या है रखा,
1: अभी है जवा, दुनिया का कुछ नहीं है बड़ा चक्का।
0: प्यार नहीं तो दुनिया में फिर बोलो क्या है रखा,
2: रुक सक तो रुको हमको, रुक सक तो रुको हमको, हम तो नैना चार करेगा
1: नहीं डरेगा।

0: मान भी जाओ प्यार से अच्छा नहीं है कोई धंधा।
1: जान की तेरी खैर नहीं है,
0: अबे भाग जल्दी।

0: कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा।
1: पहले तो दिल फेंक कभी ना देखा है वैसा।
0: कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा, मानो या न

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्ध पाको।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सदैव भरी।
0: One oh four eight.

0: चलेगा, हो कैसे जो भी काम बना, पूछो तो इस दौलू से ये कैसे दौलत राम बना, कैसे दौलत राम बना,
1: इसीलिए तो कहा है।

0: बुरा नतीजा
1: क्यों भाई चाचा
0: हाँ भतीजा
1: अरे क्यों भाई चाचा
0: अरे हाँ भतीजा कोई माने।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि। One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई ट्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: ಸಾವೇರ್ ಚುಚ್ಚೆ ಪಾಟಿ.
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 5320411 98020 76888।
8: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। नमस्ते आदाब, मैं आपका रेडियो दोस्त या भाई या अंकल अमीन सायानी 1962 और 63 में बटा हुआ, जिसके पहले हिस्से में 1962 के 10 चोटी के गीतों की झलकें, मगर उनसे भी पहले 5 बड़े ही प्यारे गीत बहनों भाइयों जो सालाना संगीत सीढ़ी तक न पहुंचकर रह गए गीतमाला की छाव में और वहीं से आप पर गिरा रहे हैं अपने हुस्न की बिजली।
1: आए किसने चिलमन से मारा अरे।

0: கருகை பாகல் மோய், கருகை பாகல் மோய், கருகை பாகல் மோய்.
1: और साहब 1962 में एक और यादगार नजारा था उस कमसिन भोली खूबसूरत लड़की का जो बिल्कुल पहली बार नजर आई थी स्क्रीन पर। पहली बार इसलिए कि भाई उससे पहले तो वो अपने बचपन को गुडबाई कह रही थी ना।

0: भाई आप तो जानते ही है ना कि कौन थी वो स्वीट यंग ब्यूटी। जी हाँ, सायरा बानू, जिसका टाइटल डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुबोध मुखर्जी ने और रेडियो पब्लिसिस्ट अमीन सायानी ने मशहूर कर दिया था ब्यूटी क्वीन। और भाई सचमुच सायरा के हुस्न में कुछ ऐसी बात थी कि नौजवान लड़के तो क्या अशोक कुमार जैसे सीनियर एवरग्रीन स्टार्स भी कहने लगे थे।
1: काफी खूबसूरत लड़की है ना सायरा।
2: जी हाँ, है तो बहुत खूबसूरत।
1: तुम्हें कैसी लगती?
2: बहुत बहुत खूबसूरत।
1: लेकिन एक गड़बड़ है।
2: कैसी गड़बड़?
1: सायरा मुझे अंकल कहती है।
0: खैर साहब, अब आप सायरा के हुस्न को छोड़कर आ जाइए उसकी उस पहली फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर और जयकिशन पर, जिनका नाम हमेशा संगीतकारों की पहली कतार में लिया जाएगा। और बहनों भाइयों, आज मैं आपको एक बड़ा इमोशनल इंटरव्यू सुनवाऊंगा जयकिशन की मौत के बाद उनके बारे में कही हुई उनके तन्हा पार्टनर शंकर की बात।
3: उसकी बातें, जो उसमें अच्छी बातें थी, वो सारी दुनिया को याद रहेगी। इतना खुश, इतना गुनी, अपने काम में, अपने संगीत में, अपने सारी बातों में मिलनसार, और एक दूसरे से कैसे मिल के रहना, एक दूसरे से कैसे प्यार दिखाना और कैसे प्यार लेना, वो ही जानता था। वो तो मुझे भी नहीं आता। अक्सर की मुझे डांटता था कि यार तुम तो हमेशा ही गुस्से में रहते हो, किसी को ना किसी को डांटती रहते हो तुम। लेकिन वाकई वो बहुत प्यारा था। सारी दुनिया उसके लिए और उसकी खूबसूरतियों के लिए, उसकी अच्छे काम के लिए, और उसने जो अच्छा काम किया है वो सब लोगों को याद रहेगा।
0: और फिर शंकर भी तो चले गए।

0: देखिए ना कैसी कैसी दिल को छू लेने वाली यादों से हमें फिर मिला देती है गीतमाला की ये छांव। जैसे जीवन की भूल भुलैया में कोई बिछड़ा हुआ यार मिल जाए।
1: छोटी सी ये दुनिया।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में मेरा चुना हुआ 1962 की छाव का आखिरी गीत बड़ी खूबसूरत फिल्म सूरत और सीरत का है, जिसकी प्रोड्यूसर थीं मशहूर पुरानी स्टार शोभना समर्थ और हीरोइन थीं शोभना जी की बड़ी बेटी और हम सब की प्यारी अदाकारा नूतन, और डायरेक्टर थे नूतन ही के पति नेवल ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल। अफसोस के मनमोहनी सुलझी हुई नूतन 1991 में हम सबको छोड़कर दुनिया से दूर चली गई, और उसके कुछ वर्षों बाद उनके पति डायरेक्टर रजनीश बहल ने भी एक दुर्घटना में अपने प्राण त्याग दिए।
1: बहुत दिया

अच्छा अब तैयार हो जाइए, आने वाली है 1962 की सालाना गीत माला में सबसे ज्यादा हिट होने वाले 10 टॉप गीतों की झलकें। दोस्तों फिल्म संगीत के सुनहरे दौर के जो भी गीत गीतमाला के पायदानों पर बजते थे और जो मैं गीतमाला की छांव में बजा रहा हूं, ये सारे के सारे इतने मधुर थे या चटपटे थे कि आज तक हम उन्हें बड़े प्यार से सुनते हैं। लेकिन कभी अगर वो पुरानी फिल्में देखने को मिल जाए ना, तो उनके गीत तो आज भी रोमांटिक और इमोशनल लगते हैं, मगर उनके सीन्स जो थे उन्हें देखकर हमें थोड़ी बहुत हंसी जरूर आ जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ जब मैंने उन 10 टॉप सॉन्ग्स को कंप्यूटर पर उतरवा कर देखा। उस साल का गीत नंबर 10 ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का था, हरियाली और रास्ता। और देखिए कितने तंदुरुस्त लगे थे उसके गर्म कपड़े पहनकर झूमते चलते गाते हुए हीरो हीरोइन, कोल मटोल बंगालन रोशगुल्ला माला सिन्हा और टोपीदार ऊंचे तगड़े पंजाबी मुस्टंडे मनोज कुमार।

दस टॉप गीतों की फिल्मों में सिर्फ दो ही कलर में बनी थी, जिनमें से एक थी गंगा जमुना। गीत नंबर 9 में गांव की गोरी यानी वैजयंती माला हाथ में कान का एक बाला लेकर बड़े मजे से डांस करके गा रही है, शायद ये जानते हुए कि उसके सुस्त प्रेमी यानी दिलीप कुमार चाहे कितनी भी दूर सो रहे हों, ये गाना सुनकर जरूर जाग जाएंगे और वहां आ जाएंगे, ये सोच करके ये कौन है जो शोर मचा रहा है भाई।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: और साथ
0: पायदाने नंबर 8 और 7 पर तो उस साल एक बड़ी अजीब बात हो गई थी। उन दो पायदानों पर 3 गाने थे जी, और तीनों एक ही ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जब प्यार किसी से होता है के। हाँ, दो गीत तो एक साथ थे नंबर 8 पर। पहले गीत में एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आती है जिसके एक कंपार्टमेंट में चुलबुली आशा पारेख बैठी हुई हैं, और साथ सड़क पर चलती हुई एक मोटर कार के ऊपर कुछ लगेज है, और लगेज के भी ऊपर बिंदास लेटे हुए गा रहे हैं देव आनंद, शुक्र है कि गिरे नहीं।
2: जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो, जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा।

0: तीनों हो लाखों में भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: और इसी के साथ नंबर 8 पर उसी फिल्म का वो गीत जिसमें एक बड़े दुबले पतले देवानंद जरा ढीला सूट पहनकर गले में बो टाई और हेयर स्टाइल में अपना ट्रेडमार्क पफ लगाकर मगर बड़े दुखी होकर गा रहे हैं क्योंकि आशा पारेख उन्हें लिफ्ट ही नहीं दे रही।

और पायदान नंबर 7 पर लगा था कि दोनों में सुलह हो गई, जैसे जीवन में नसई फिल्मों में तो अक्सर होती है ना, और सिर्फ सुलह ही नहीं बल्कि प्यार भी हो गया।

अब पायदान नंबर 6 पर एक मर्डर मिस्ट्री, 20 साल बाद का सस्पेंस। धुंध है, धुआं है, जंगल की झाड़ियों के पत्ते हिलते हैं, शहर की गलियों में साये लहराते हैं और हीरो विश्वजीत जरा डर कर, जरा चौंक कर आजकल के सोशल टीवी सीरियल्स के कलाकारों की तरह बस इधर उधर घूरते ही चले जाते हैं। मगर साहब क्या लाजवाब गाना था वो, जिसे शायद सायों में ढकी छुपी वहीदा रहमान गा रही थी ना।

0: अच्छा भाई, अब हाजिर है एक और कलर फिल्म का गीत। हीरो हैं शम्मी कपूर, जिन्होंने अपने उस रोल के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी उनसे मिले और कहने लगे,
1: या मेरे स्टार को तेरा दोस्त नासिर हुसैन ले गया, उसका स्टार मैं ले लेता हूँ, तू मेरे साथ पिक्चर बना, मैं बना रहा हूँ मिस्टर हिटलर। मैंने सुबोधा ठीक है, हम आपके साथ बनाएंगे। गोया के नासिर हुसैन ने लिया देवानंद को, सुबोध मुखर्जी ने लिया शमी कपूर को। एक तरफ भाई थी जब प्यार किसी से होता है ब्लैक एंड व्हाइट में, और दूसरी तरफ बनी मिस्टर हिटलर, जिसका नाम बदलकर हो गया जंगली।
0: अरे बाप रे, इस जंगली याहू पर तो सिर्फ सायरा बानो ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर लदी हुई बर्फ भी हिल गई थी साहब, और शम्मी के साथ सायरा भी बर्फ की घाटियों पर लेटकर स्लाइड करने लगी। ये फिसलना नई नवेली सायरा ने खुद तो नहीं किया होगा, डेफिनेटली कोई डुप्लीकेट ही होगी।
2: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें।
0: अच्छा भाई, अब जंगली से फिर शरीफ बावफा इंसान बनकर आ जाइए उस साल की ऊंची पायदान नंबर 4 पर, फिल्म अनपढ़ की एक और गजल जिस पर नौशाद साहब भी फिदा थे। स्क्रीन पर माला सिन्हा सहमी सी नजाकत के साथ अपने हीरो धर्मेंद्र की नजर इनायत का शुक्रिया अदा करती हुई।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। और साहब, अब आते हैं 1962 के टॉप थ्री सॉन्ग्स। नंबर तीन पर था मीना कुमारी का नर्मो नाजुक शर्माता मुस्कुराता हुआ हुस्न शबाब, जिसके सुरूर में फिल्म आरती के बड़े शरीफ, गरीब मगर थोड़े से आलसी प्रदीप कुमार बैठे हुए गा रहे हैं उस संगीतकार की बड़ी खूबसूरत धुन, जिसकी रोशन मधुरता के बारे में मुझे एक बार लता जी ने बताया था।
1: बड़े भावुक थे रोशन साहब, छोटी छोटी सी बात उन्हें बुरी लग जाती थी और फिल्मी दुनिया की धंधेबाजियों में उनकी कला हमेशा बौखला कर रह जाती। मगर एक बात जरूर है, परेशानी के उन दिनों में भी उनके संगीत में कभी उलझन ना आई। उनकी धुनों में एक संतोष, एक इत्मीनान हुआ करता था।
2: अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब

बस अब 1962 के दो सबसे ज्यादा कामयाब गीतों के लिए देखिए, पर्दे पर कई रंग उभरे, लेकिन भाई पायदान नंबर दो पर रंग भी गम का था, गंगा और यमुना की जुदाई का गम। उधर दिलीप कुमार जेल में बंद है बेचारे, पता नहीं क्यों, और इधर अकेली वैजंती बाला आंसू बहा रही हैं और नेचुरली गा रही हैं।

उपादाने चढ़ते चढ़ते 1962 के वार्षिक कार्यक्रम के आखिर में बजा चोटी की पायदान का बिगुल। फिल्म जंगली का वो गाना तो एक था, मगर लता ने सारा के लिए और रफी ने शमी कपूर के लिए उसे अलग अलग गाया था, और हमारे रिकॉर्डिस्ट के वर्गीज जॉन ने उसे आपके लिए बना दिया है ड्यूएट।

एक बात जरूर नोट कीजिए बहनों भाइयों कि 1961 की फिल्म ससुराल के सुपरहिट गीत चश्मे बद्दूर और 1962 की फिल्म जंगली के इस गीत से शंकर जयकिशन ने फिर गीतमाला की चोटी की पायदान नंबर 1 पर कब्जा किया था 6 वर्षों के बाद, जब 1955 में श्री 420 का मेरा जूता है जापानी चमका था। और भाई उसके बाद क्या हुआ, आगे चलकर शंकर जयकिशन को रोशन, कल्याणजी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कैसे तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा, ये आप गीतमाला की छाओ के अगले वॉल्यूम्स में सुनेंगे। मगर अभी तो ये घंटा खबर दे रहा है कि अब 1962 का हाल हो गया खत्म, बस अब जल्दी से कदम रखो 1963 में। तो लीजिए साहब 1963 की नीचे वाली पायदाने आपके लिए है तैयार। उस साल की एन्यूअल गीतमाला में नंबर 32 पर भाई प्यार किया तो डरना क्या, यही फिल्म का नाम था।

0: नंबर 30 पर मोहब्बत की आंख से बहे हुए खूबसूरत आंसू ताज महल के पस मंजर में हसीन प्यार की मुजरिम बीना राय की शिकायत।
1: जो

अच्छा भाई, अब गीत माला की छांव में का वॉल्यूम नंबर 19 सुनने वाले सभी बैचलर्स यानी कुंवारे मनमौजी नौजवानों, 1963 की पायदान नंबर 26 पर ये देखिए आप ही का छपाया हुआ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट है। जरूर

0: अच्छा
1: है।
0: क्या ख्याल है बहनोर भाइयों, अब 1963 की लोकप्रियता की मकबूलियत की धूप से निकलकर फिर चलें छांव की ठंडक में। छांव का यह हिस्सा शुरू होता है फिल्मी दुनिया के बड़े सीनियर, बड़े लाजवाब संगीतकार सज्जाद हुसैन की धुन से। बल्कि उनकी यही फिल्म शायद उनकी आखिरी फिल्म थी। इतने महान मूसीकार होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ कोई 14 फिल्मों में संगीत दिया। वजह ये थी कि वो जरा कड़क टाइप के इंसान थे, उनकी किसी से बनती ही नहीं थी। बहरहाल उनकी वो आखिरी फिल्म दो मशहूर भारी भरकम पहलवान टाइप के सोल्जरों की कहानी थी, जिसमें बाप रुस्तम बने थे पृथ्वीराज कपूर और उनका वो अनजाना बेटा सोहराब, उसका रोल किया था प्रेमनाथ ने। रुस्तम की बीवी बनी थी सुरीली सीनियर सिंगिंग स्टार सुरैया, जिनका गाया हुआ शायद करीब करीब आखिरी गीत इसी फिल्म में था। मगर बहनों भाइयों, आज मैं पेश करूंगा लता का गीत उस फिल्म का, जो लता के बड़े यादगार गीतों में गिना जाता है।

सज्जाद ही की तरह ऐसे ही एक और बड़े काबिल म्यूजिक डायरेक्टर थे इकबाल कुरैशी, जो अपने जमाने की जबरदस्त खींचा तानी और कंपटीशन में जरा पीछे रह गए। 1963 में इकबाल कुरैशी का काफी जोरदार संगीत था फिल्म ये दिल किसको दूं में। मैंने भाई उस फिल्म में आपका ये दोस्त अमीन सायानी में नजर आया था। जी हाँ, किसी रोल में नहीं था, मैं सिर्फ फिल्म के टाइटल्स में था। बहरहाल तीन बड़े ही प्यारे और अनोखे गीत थे उस फिल्म में, जिनमें से एक मैंने आज की छाव के लिए चुना है।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।